मैं सुबह का ना वो जिया था ना यूं ये कोई शक पचाऊं या ना इंत पचाऊं ये जो चों देना वो है ना यूं मैं यूं जमाऊं ये उन कोई बागवाला तो पीना ऊपर एक चां जात कोई सो ना यूं चाहे मैं था वांच का बिस्तर जो चार सवाल को जो तू सुध में ये पंद्रह यूं चां मिया सुबह मैं यूं जमाऊं ये मिया सुबह तू शबाव होने को ना यूं चार सुबह जमाऊं ये आई सुबह युवा का है वो ने को वाला वो चाहिए युवा का ना हम सुन का आई सुबह जमाई है ना सवाई शपा किम ही ना उसको है चार सुबह जमाई है मायो चार ऐ सुबह तंजी ना हुआ ने को ना यू कुछ सुबह जमाई है ना बात सुख सवाई सुबह ही कुछ सुबह जमाई हाँ ना पूछ भी ना वो है ना यू चम सुबह जमाई ना इंते पा वाला पूछ भी ये ना यू मताऊ चासु बजावाई है वो चाजू है चूंदे ना माजे तो कोई सुबजावाई पुईपा ना हुआ है ना न्यू क्या तब जावाई आई सुबह ये कोई शक पा पुईपी ये कोई शिवते बा मायनू थैंक हुए वश बजावाई वाला हुआ वाने का ये थक कोई ना सा पियें सुवश वांस पाने को मायनू ताशु बजावाई उस ने को ना न्यू चासु बजावाई है कोई शक पा पुईपा wala chamoy use wish na won has na nyu kwach pa chamoy ai suba puy pi yen na nyu ai suba chata i ko shak pa chamoy wala sus na un suna ente pa na nyu e ko cha cha suba fin ze ne ko e ko cha cha suba chamoy ni ko pa chamoy han da pe na na wo he na nyu kin sus ne mi na wo he na nyu ajua i suba chamoy wala puy pi yen na nyu e ko cha cha suba fin na wo he ne ko na ente